0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो पियम ये करे वेर क्वारो
0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो

0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो
2: जुडास रैप नॉलेज पर्ट अ लवर बॉय वन स्टेप सोल्स ऑफ अफ्रीका.